New Zealand. In today's AI world, people say AI can do everything. AI के द्वारा आप letter लिख सकते हैं, calculations कर सकते हैं, reasoning कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात है. But the question is, does children have the right question to ask to AI? Technology can of course produce an answer, but humans still need to provide with critical thinking and right questions to get the right answer. Imagine a child is asking AI, what is 15% of $200? And AI says it's $30. Great. But what if AI makes a mistake? क्या आपका बच्चा मिस्टेक पहचान पाएगा? बेसिक न्यूमरेसी का रियलिटी चेक कर पाएगा? वैसे ही अगर AI से आप ऐसे लिखवा लो हिस्ट्री के बारे में, किसी और लिटरेचर के बारे में, पर जब तक आपके बच्चे को हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा, लिटरेचर के बारे में पता नहीं होगा, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी कि उसको रिफ्लेक्ट करने की, उसको रिसर्च पे डालने की, उसको एनालाइज करने की, वो ऐसे का कोई फायदा नहीं होगा. So perhaps the question should not be maths or technology. It should be maths and technology. Similarly, it's not English or AI. It's English and AI, which has to coexist together. Because AI can give you answers, but not the critical thinking. Again, I'm repeating myself, it is very important that you work in AI, because AI is the future. It's the present and the future. But AI ko कंट्रोल करना आपके हाथ में है. लेट्स नॉट अलाउ AI टू कंट्रोल यू. यू हैव टू कंट्रोल दीज टेक्नोलॉजीज.

इसी डिस्कशन का बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि हर बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं होती, हर बच्चे को रीडिंग पसंद नहीं होती. कुछ बच्चे नंबर्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे साइंस में अच्छे होते हैं, किसी को ड्राइंग पेंटिंग आर्ट्स पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स, किसी को म्यूजिक, किसी को एनिमल्स पसंद है. सो एवरी किड इज नॉट आइडेंटिकल. और पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमने डुप्लीकेट्स बनाने हैं एक दूसरे के, नो. बट डेफिनेटली आप जो बेसिक स्किल्स हैं लाइफ की वो आनी बहुत ज़रूरी हैं. कुकिंग आनी ज़रूरी है. कुकिंग में अगर मेजर करना पड़े कि आपको 3/4 क्वांटिटी डालनी है, तो बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए 3/4 क्वांटिटी क्या होती है. बेटर प्राइसिंग क्या है मार्केट में जाने के लिए, अगर ट्रैवल कर रहे हैं टिकट्स बुक करानी है, बेटर ऑप्शन क्या है, कौन सी फ्लाइट से टिकट बुक कराने का, स्पोर्ट्स में स्कोर क्या है, स्पोर्ट्स के गेम्स कैसे होते हैं, एवरेज कैसे निकाली जाती है, गार्डन में काम करना है तो कितना एरिया आपने गार्डन के लिए छोड़ना है और कितना एरिया आपने यूज करना है अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए. पॉकेट मनी है, कितनी सेव करना चाहते हैं आप. तनख्वाह आई है, क्या है आपकी सेविंग की डिटेल्स और बजटिंग की डिटेल्स.

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है. थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू. हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.

signing off today from Namaste Southland, I want to leave you with few thoughts. Teachers ko tahe dil se thank you. Aap different bachon se deal karte hain jinke different needs hai, different family circumstances hain aur different education environment hai. So definitely huge respect to teachers. To parents, my message would be maths aur English ko punishment nahi banaye. उनको बार बार ये ना सुनाए कि उन्हें मैथ्स नहीं आती, उनको वर्क हार्ड करना है, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, उन्हें वोकैबुलरी नहीं आती, ग्रामर नहीं आती. एंड थैंकफुली हम न्यूजीलैंड में रहते हैं, हमें यहाँ पे मार्क्स को चेस नहीं करना, हमने यहाँ प्रैक्टिकलिटी को चेस करना है. हमें नॉलेज देनी ज़रूरी है बच्चे को कि मैथ्स क्या है और लाइफ के हर सेगमेंट में कैसे और कहाँ काम आती है. वैसे ही इंग्लिश हमें कहाँ लाके खड़ी कर सकती है अगर हम सही तरीके से उसे यूज कर पाए. इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेपिंग स्टोन टू मेक यू ग्रो इन योर लाइफ. दिस शो इज अवेलेबल एज अ पॉडकास्ट फ्रॉम रेडियो साउथलैंड वेबसाइट radiosouthland.org.nz. यू कैन स्ट्रीम और डाउनलोड फ्रॉम आवर साइट. जस्ट लुक फॉर द प्रोग्राम टैब. लिंक्स टू द स्ट्रीम पॉडकास्ट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन आवर फेसबुक पेज facebook.com/RadioSouthland. You can subscribe to Apple Podcast platform and never miss an episode. You can also look for podcasts on Spotify, search us out and make sure you follow us. Or there's updated accessmedia.nz app. Look for the kiwi fruit logo. Just download it for free from Google Play and then make sure you select Radio Southland as your station.